ते ये खीरी के बेरी ते तारे ऐश फेरी स्मारो ना गेरे ते सिंह पतुक खबाबे और मन खराबे इंची ते